दंत है टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तै पी उतरै पारा। हे मन, परमात्मा दी शरण पैके उस दे नाम दा ध्यान धरिया कर। जिस परमात्मा दा सिमरन करद्या गनका विकारां विच डुबणों बच गई सी, तू भी हे भाई उस दी सिफत सलाह अपने हिरदे विच वसाई रख रहाओ। हे भाई, जिस परमात्मा दे सिमरन दी राही ध्रुव सदा लई अटल हो गया ते उसने निरपैता दा आत्मिक दर्जा हासिल कर लिया सी, तू उस परमात्मा नूं क्यों भुलाया होया है? ओ तां इस तरह दे दुखां दा नाश करन वाला है। हे भाई, जिस वेले ही गज ने कृपा दे समुंदर परमात्मा दा आसरा लिया, ओ गज हाथी तंदुए दी फाही तो निकल गया सी, मैं कित्थों तक परमात्मा दे नाम दी वडियाई दसां? परमात्मा दा नाम उचार के उस हाथी दे बंधन टुट गए सन। हे भाई, सारा जगत जानदा है कि अजामल वकारी सी, परमात्मा दे नाम दा सिमरन करके अखां दे झमकण जितने समय विच ही उसदा पार उतारा हो गया सी। नानक आखदा है, हे भाई, तू सारियां चितवनियां पूरियां करन वाले परमात्मा दा नाम सिमरिया कर, तू भी संसार समुंदर तों पार लंघ जाएगा उसदा नाम सिमरदिया होया।